0: 天天林子诺扎这些比农的恰总动作松，林子内总经验可把老板点子当，林子做兄娃家门项目的这个相当硬，晓得，看见龙体就扎这些比林子引导思路，大有木？
1: मंदा में भी चादों का तेंदा, स्वामी चंगु जगर चोगी पैदा ची, निंजे योंजे जरकोगी, योंस चोगी रयोंजे सिंकम बीना, चेला वोंवी डिमु लीसे निंगीना, चेजे तोड़र गुडुगे हवायोंने, रयोंजे सिंकम्स